दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में आज शामिल हो चुका है शिवनील शर्मा जो भी हाल ही में इंडिया के दौर पे गया था। आज इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा करके आपके लिए कुछ गीत सुनाना चाहेंगे क्योंकि हमारे जब स्टूडियो में गेस्ट आ जाते हैं तो हमारा जो फोकस गेस्ट पे रहता है, टॉपिक पे होता है, थीम पे होता है और गीत हम कुछ कम ही बजाते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम आप को ज़्यादा से ज़्यादा गीत सुनाएं। हमने आज का जो टॉपिक सुना है कपूर फैमिली। जी हाँ, जो बॉलीवुड की बात किया जाए देन कपूर का जो नाम है किसको नहीं पता है, और बॉलीवुड गोज फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू टुडेज़ टाइम, और कपूर तब भी था, आज भी कपूर चल रहा है। तो हम कुछ याद ताज़ा करेंगे और कुछ आज के भी गाना आपको सुनाएंगे। तो चलो हम शुरू करेंगे, बहुत पुराने पीछे जाते हैं जब राज कपूर के ज़माना था और ये 14 ईयर्स कुछ की जो अपलोडेड गाना था, लेकिन ये जो एक्चुअल गीत है तो बहुत ही पुराना है क्योंकि राजकुमार का है। तो ये आप गीत पहले सुनिए, फिर हम कोशिश करेंगे इस पर कुछ चर्चा करने के लिए।